0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Surya FM. Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihan ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: 才华就你所路 FM 所长
1: 所路 FM 101.2MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागी हम लोग अभियान
3: संचय सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
4: 10 AM बिहार को 10 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुदकुंडा नगर पालिका 5 सोलु कुंभू

पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन संबंधी सूचना। गत 2026 अगस्त 20 में आयोग विनाशकारी बाजी पहरो ठूल जनधन को क्षति प्रति हमी गहरो सता सही राष्ट्रीय विपत्ति को गुजीलाई गंभीरतापूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को मिति सारिक हो। इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति दुख्भिक अटूट सहयोग विश्वास को लगी हम संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाह। नया मिति में इस मैराथन भव्य र सफलतापूर्वक संपन्न करना हमी थप सहयोग सूचना तथा शुभकामना प्रदान कर हार्दिक आग्रह करेड पांडा नेटवर्क संघ को सहकार में इस आयोजित समिति ने आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 में आयोजना करने रेड पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन करी 2026 नोवेम्बर 28 में आयोजना करने निर्णय बिहरा संबंधित सभी में जानकारी कराइन्छ। हिमालय स्वास्थ्य र वातावरण सेवा।

0: सोलू एफएम 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागी हम अभियान
1: साइंचे सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू